पर्वता पौडेल को यही 2083 असोज 7 गते 58 वर्ष को उमेर में भएको निधनले हामी त्रिवेणी बाबा समूह बलुवाटार परिवार मर्माहित भएका छौं। यस दुखद घड़ी में दिवंगत आत्मा को चिर शांति को कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। साथै स्वर्गीय आत्मा को वैकुंठ बास होस् भनी भगवान संग प्रार्थना गर्दछौं। त्रिवेणी बाबा समूह परिवार बेसी शहर नगरपालिका 7 भलुवाटार लमसुङ।